0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: मन की समता और संतुलन ही सच्चा योग है। समभाव वो शक्ति है जो सुख दुख लाभ हानि और सफलता असफलता में भी मन को संतुलित रखती है। जो व्यक्ति समभाव अपनाता है वही सच्चे अर्थों में शांत परिपक्व और महान बनता है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

राजकमल और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के बाद आइए अब सुनते हैं सरस्वती कुमार दीपक की रचना सुरेंद्र कोहली की आवाज में।

ये भक्ति गीत था सुरेंद्र कोहली और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं शब्द भाई साधु सिंह जी और साथियों की आवाज़ों में।

0: भाई साधु सिंह जी के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, दीमक एक बहुभक्षी कीट है। इसका प्रकोप घरों, फसलों, फल वृक्षों एवं लकड़ी आदि पर होता है। दीमक भूमि के नीचे या सूखी लकड़ी के अंदर निवास करते हैं। खेत में इसका प्रकोप फसल के बोने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इनका नियंत्रण करना भी कठिन कार्य है। दीमक पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। इनकी अनेक जातियां पाई जाती है। साथियों, चूंकि दीमक का भोजन सेल्युलोज है, अतः जिस भी वस्तु में सेल्युलोज पाया जाता है वो सब दीमक का भोजन बन सकते हैं। यह एक बहुभक्षी कीट है। दीमक अपना कार्य रात में करती है और दिन में छुपी रहती है। खेत में दीमक का प्रकोप सरलता से पहचाना जा सकता है। प्रभावित पौधे कटे हुए दिखाई पड़ते हैं और उन पर मिट्टी के कण भी

0: चिपके रहते हैं। धान की फसल पर भी दीमक का प्रकोप होता है, लेकिन चूंकि हमारे इन द्वीपों में धान की फसल अक्सर बारिश के दौरान होती है और खेत में पानी भरा रहता है, इसलिए दीमक का प्रकोप यहाँ पर कम देखा गया है। दीमक जड़ एवं तनों को खाकर सुखा देती हैं। प्रभावित सूखे पौधे को सरलता से आप उखाड़ सकते हैं। उखाड़ने पर पौधे के साथ मिट्टी तथा गंदले सफ़ेद पंखहीन 6 से 8 मिलीमीटर लंबे श्रमिक दीमक दिखाई पड़ते हैं। फल वृक्षों पर दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। मिट्टी की बनी कतारों के रूप में बाम्बी वृक्षों पर दिखाई देती हैं, जिसमें कि दीमक रहती हैं। ये वृक्ष के तनों को भेद कर उसके अंदर चली जाती हैं और अंदर ही अंदर खाकर वृक्ष को खोखला कर देती हैं। किसान भाइयों, दीमकों के दुष्प्रभाव के कारण इनका प्रबंधन आवश्यक हो गया है। बरसात की शुरुआत में दीमक के झुंड अपने निवास स्थानों से निकलकर रोशनी की ओर भागते हैं, इसलिए खेतों, बागों एवं अन्य स्थानों पर प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप लगाने चाहिए। साथ ही प्रकाश प्रपंच के नीचे कीटनाशक का घोल भी रखना चाहिए ताकि जो कीड़े इस घोल में गिरे वे मर जाएं। खेतों में कभी भी बिना सड़ी गोबर का खाद ना डालें, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद दीमक का भोजन बनकर उनकी बढ़ोतरी में सहायता करती है। फसलों की कटाई के बाद उनके ठूंठ समूल नष्ट कर देने चाहिए, अन्यथा फसलों के ना रहने पर दीमक इन ठूंठों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनकी बढ़ोतरी होती रहती है। गर्मियों में खेतों की जुताई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन खेतों में फसलों के अवशेष रहते हैं दीमक उनको अपना भोजन बनाती है और जीवन यापन करती है। फसलों की कटाई के पश्चात खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमिगत दीमक ऊपर आ जाएंगी और पक्षियों द्वारा खाने से नष्ट हो जाएंगे। उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से भी दीमक प्रबंधन में हमें मदद मिलती है। बुआई से पहले भूमि में नीम की खली 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलानी चाहिए। इससे भी दीमकों का प्रकोप कम होता है और दीमक नष्ट हो जाते हैं। खेतों या बागों में जहां पर भी दीमक द्वारा बनाए गए मिट्टी के टीले हों, उनको कीटनाशक के घोल से तर दें या फिर 4-8-10G ग्रेन्यूल्स का इन टीलों में प्रवेश करवा दें। यदि संभव हो तो इन टीलों में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से धूम्रीकरण कर दें। इन विधियों से दीमक को नष्ट करना आसान होता है। खेतों में जहां जहां पर दीमक का प्रभाव दिखाई दे केवल उन्हीं स्थानों का उपचार करें। पूरे खेत में कीटनाशकों को डालना उचित नहीं होगा, इससे कीटनाशकों की मात्रा अधिक लगेगी, खर्च ज्यादा आएगा तथा प्रदूषण की भी ज्यादा आशंका रहेगी। साथियों, जिन खेतों में दीमक का प्रकोप पूर्व वर्षों में रहा हो वहां कीटनाशकों से बीजोपचार कर ही बुआई करनी चाहिए। बुआई के 3 से 4 घंटे पूर्व क्लोरपाइरिफॉस 20 EC 25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित कर बीजों की बुआई करनी चाहिए। जिन स्थानों पर प्रतिवर्ष दीमक का आक्रमण होता है वहां बुआई के पूर्व किसी कीटनाशक जैसे मेलाथियन 5% पाउडर कूड़ों में डाल देनी चाहिए। इनकी मात्रा आवश्यकता अनुसार 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप रख सकते हैं। एक परंपरागत तरीके से भी आप दीमक का प्रबंधन कर सकते हैं। खेत के चारों कोनों और मध्य में 1 मीटर चौड़ा तथा 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें ताज़ा गोबर डाल दें। खेत के सभी दीमक इस गोबर पर आ जाते हैं। दीमक दिखने के 3 से 4 दिन बाद गड्ढे में क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का छिड़काव कर दें, जिससे खेत के सभी दीमक नष्ट हो जाते हैं और पूरे खेत में कीटनाशक का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ता। ये उपाय किसानों के लिए सरल, प्रभावी और अत्यंत कारगर साबित हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की

0: विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700

0: ये जल यान कल प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। MV कैमलवे लिटिल अंडमान के लिए आज रात 9 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान रविवार 19 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV बाराटान स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV कमोटा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV स्ट्रेट आइलैंड कल प्रातः 6:15 पर शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। MV बाराटान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान परसों रविवार 19 तारीख को प्रातः 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV हटबे स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर 3 MV कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान परसों रविवार 19 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिबानी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज बातें इंतज़ार की। इंतज़ार एक छोटा सा शब्द

लेकिन इसके पीछे छिपी होती हैं ना जाने कितनी कहानियाँ, जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है। कभी-कभी किसी अपने का इंतज़ार उम्मीद से थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती है।

दोस्तों, इंतज़ार एक ऐसा एहसास है जो हम सबके ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर दस्तक देता है। जब हम किसी बेहद ख़ास इंसान की राह तकते हैं तो उस समय का कोई पैमाना नहीं होता। तब कुछ वक्त या कुछ पल भी बेहद कम लगने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये इंतज़ार जितना लंबा और गहरा होता है, मिलने की वो खुशी हमें उतनी ही दुगनी मिलती है।

तो दोस्तों याद रखिए, इंतज़ार अगर उम्मीद के साथ हो तो हर आने वाला पल और भी खास बन जाता है। इसीलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर इंतज़ार का एक ना एक दिन खूबसूरत अंत ज़रूर होता है। इसी के साथ अब कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। इंद्रधनुष।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की 302 कड़ी।

वानर सभी दिशाओं से ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारी शिलाखंड तथा वृक्ष खेल ही खेल में उखाड़ लाते हैं। नल और नील उन्हें गढ़कर सेतु का निर्माण करते हैं। ये सुंदर रचना देख श्री राम अति प्रसन्न हैं। उस स्थल को अत्यंत रमणीय और उपयुक्त देखकर वे वहां शिव की स्थापना करने का संकल्प करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 302वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा की तीसरी कड़ी।

सुरेश वाडेकर तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा की तीसरी कड़ी।

श्रोताओं नमस्कार। गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। राजकोट में मोहनदास ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और भावनगर के कॉलेज में प्रवेश ले लिया। खूब तैयारी कर साज सज्जा के साथ मोहनदास भावनगर के कॉलेज पहुंचे। वह पहली बार घर से अकेले दूर आए थे। उन्हें पत्नी, माँ और घर की बहुत याद आ रही थी और फिर नया कॉलेज भी उन्हें पसंद नहीं आया। बस एक दिन उन्होंने अपना सामान बांधा और घर लौट आए। घर वापस आकर मोहनदास तो बड़े प्रसन्न थे, पर उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास परेशान थे। एक दिन उन्होंने मोहनदास से कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दूँ। मैंने पैसों का भी प्रबंध कर लिया है। इंग्लैंड का नाम सुनकर मोहनदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी दृष्टि में इंग्लैंड महान व्यक्तियों का देश था। लेकिन जब उनकी माँ को पता चला कि उनका छोटा बेटा इंग्लैंड जा रहा है, वह बहुत बिगड़ी और उन्हें साफ साफ कह दिया, मोहनिया इंग्लैंड नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ? मोहनदास ने पूछा। क्योंकि वहाँ जाकर तुम मांस खाना शुरू कर दोगे, लड़कियों के पीछे पीछे भागोगे और शराब पीने लगोगे। अगर ऐसी बात है माँ, तो मैं कसम खाता हूँ कि इन सब चीज से मैं दूर ही रहूँगा, मोहनदास ने कहा। कुछ समझाने के बाद माँ उन्हें इंग्लैंड भेजने को राजी हो गई। विदेश जाने से पहले कस्तूरबाई ने उनके पहले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम हरिलाल रखा गया। इंग्लैंड जाने की तैयारियां चल रही थी। मोहनदास के लिए कोट, पैंट, सूट सिलवाया गया। इस समय मोहनदास 17 वर्ष के थे और अभी भी माँ की दी हुई माला गले में पहने थे। अपनी पत्नी, नवजात शिशु और माँ को छोड़कर जाने के विचार से मोहनदास मन ही मन दुखी थे, पर उन्होंने मन संभाल लिया। एक दिन शुभ मुहूर्त पर वे अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास के साथ बम्बई पहुंचे। यहाँ भाई लक्ष्मीदास ने उनके लिए पानी के जहाज का टिकट खरीद दिया। उनकी यात्रा के लिए मिठाइयाँ, फल और शाकाहारी खाद्य सामग्री भी ले ली। जिस दिन उनको जाना था, मोहनदास बड़े सवेरे उठ गए। उन्होंने दाढ़ी बनाई, नहाए धोए, करारे कॉलर वाली कमीज पहनी व टाई लगाई, फिर 3 पीस वाला सूट पहना, नए जूते पैरों में डाले, शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारे और अपने पर मुग्ध होते हुए देर तक खड़े रहे। चलते समय उनके मित्र ने उन्हें चांदी की जंजीर भेंट में दी। भाई ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखें भर आई। जहाज ने आखिरी सीटी बजाई और मोहनदास भाई व मित्र से विदा लेकर डेक पर चले गए। धीरे धीरे जहाज तट से दूर होता गया। मोहनदास तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक भाई और मित्र आंखों से ओझल ना हो गए। उनका जहाज तट से दूर पहुंच गया था। उन्होंने देखा जहाज पर चारों तरफ अनजाने लोग हैं और सभी अंग्रेजी बोल रहे हैं। मोहनदास को अभी केवल टूटी फूटी ही अंग्रेजी बोलनी आती थी। हिम्मत करके उन्होंने यात्रियों से बात करनी चाही, पर किसी ने भी उनसे ठीक से बात नहीं की। जब उन्होंने ये बताया कि वे शाकाहारी हैं, तो एक यात्री ने उनसे कहा, तुम्हें जहाज पर ताजी सब्जियां नहीं मिलेंगी, मांस मछली नहीं खाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। क्षण भर के लिए मोहनदास डिगे, फिर उन्हें माँ

को दिया हुआ अपना वचन याद आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे शाकाहारी ही रहेंगे। मोहनदास संकोची स्वभाव के थे। वे अधिकांश समय अपने कैबिन में अकेले ही रहते। एक रात उन्हें बिस्तर पर लेटे लेटे बड़ा अकेलापन लगा। वे गई रात तक रोते रहे। फिर उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और सो गए। 21 दिन की यात्रा के बाद उनका जहाज अनजान देश इंग्लैंड के तट पर जा लगा। ठंडी ठंडी हवा, बादल भरा आकाश देखकर जैसे उनकी शक्ति लौट आई। उन्हें हर चीज बड़ी सुंदर लगने लगी। वे संवर कर अपने निश्चित होटल में पहुंच गए। मोहनदास 2 दिन तक होटल में ठहरे। तीसरे दिन जब वे अपने परिवार के मित्र डॉक्टर मेहता के ड्राइंग रूम में बैठे थे, उन्होंने देखा बराबर वाली मेज पर एक रेशमी टोप रखा है। मोहनदास ने टोप को छूकर देखा कि वह कैसा है। डॉक्टर मेहता ने उन्हें देख लिया। वह बोले, मिस्टर मोहनदास, याद रखिए कि आप इंग्लैंड में हैं, भारत में नहीं। यहाँ पर कोई भी किसी की चीज नहीं छूता। जब पहली बार किसी से मिलिए, सोच समझ कर प्रश्न कीजिए। यहाँ ऊंचे स्वर में किसी से बात मत कीजिए और बात करते समय किसी को सर कहकर संबोधित मत कीजिए। डॉक्टर मेहता की बात सुनकर मोहनदास ने लज्जा से सिर झुका लिया। उन्हें वहाँ की हर बात विचित्र लगी। वे सोचने लगे कि ऐसे देश में वे कैसे जीवित रह पाएंगे। श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम गांधी चर्चा की तीसरी कड़ी सुन रहे थे।
1: लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती FM श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप आनंद ले सकेंगे

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे रूना लैला और ए हरिहरन। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में इरशाद खान का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1330वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। दोपहर 12 बजे तेलुगु में होगा युवाणी कार्यक्रम। मलयालम में स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। महफिले कवाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कवाल होंगे मास्टर हबीब निज़ामी और बशीर अहमद। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे एक ही श्रोता के पसंद के गीत। आधुनिक गीतों का लुत्फ लीजिए 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में श्री विवेक कुमार पांडे से बातचीत की जाएगी, विषय रहेगा मशरूम की काश्त। समाचार तरंगिणी सुनिए 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर चर्चा के बाद होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान और रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमंत्री चण्डीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोनद्विवादने सः सप्तशताधिकचतुस्सहस्ररूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मकपरियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालन्धरनगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः सप्तत्यधिकचतुश्शतोत्तरपञ्चसहस्ररूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोकसंवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतरदेशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगि दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृतसत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्णप्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीय चिकित्सा, दन्तचिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अङ्कपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% तथा न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:03 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48।

मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। यह थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे रूना लैला और ए हरिहरन। तत्पश्चात सवेरे 9 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का तराने सुहाने कार्यक्रम में। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में इरशाद खान का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1330वीं कड़ी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: भाइयों और बहनों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नसबंदी कराई है, क्या आपने IUD लगवाई है, क्या आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं, और ऐसे ही कई तरीके हैं परिवार नियोजन करने के, तो फिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जनता को भाषण दो तो बस तालियां बजा देती है। अब आप तो काम की बात सुनिए, परिवार नियोजन को अपनाइए, अपने बच्चों में अंतर लाइए, परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि हमारा आज का फैसला आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पर्यटन विभाग की ओर से मॉनसून खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव का दूसरा संस्करण आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उद्योग विभाग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय TB प्रभाग की ओर से TB मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया गया।

खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आज आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय महोत्सव आज से 19 जुलाई तक प्रदर्शनी मैदान में शाम 5 बजे तक चलेगा। महोत्सव में खान पान के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जूनियर और सीनियर श्रेणियों के लिए पर्यावरण बचाओ हमारी पृथ्वी बचाओ विषय पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 11 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य द्वीप समूह के पशुपालकों को बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं की हानि होने वाले आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं और सुअर जैसी श्रेणियों को शामिल किया जाएगा। इसमें छोटे सीमांत किसान और स्वयं सहायता महिला उद्यमी लाभान्वित होंगी। पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पशुपालक और किसान पंजीकरण के लिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में कल प्रादेशिक सेना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता सत्र में 154 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना बिहार के सूबेदार PSS राव मावरी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रादेशिक सेना में सेवा की भूमिका, महत्व और इससे जुड़े अवसरों के बारे में जानकारी दी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RVR मूर्ति ने छात्रों के बीच अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड NEUT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित विभिन्न डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी पाठ्यक्रमों की 110 सीटों के लिए सीट आवंटन कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड करने, दस्तावेजों के सत्यापन, विकल्प भरने और सीट आवंटन की प्रक्रिया आज से बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो रही है। सुदूर द्वीपों में LPG की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रशासन, अंडमान निकोबार कमान और भारतीय नौसेना के समन्वित प्रयासों से कचाल द्वीप के लिए भारतीय नौसेना के एक जहाज के माध्यम से भरे LPG सिलेंडर भेज दिए गए हैं। ये कदम LPG की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और TB मुक्त भारत ऐप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उद्योग विभाग की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उत्पादों के बैकवर्ड फॉरवर्ड, साझा बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान और सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए जिलों के उत्पादों की पहचान की गई है, जिसमें दक्षिण अंडमान जिले के समुद्री आधारित मछली उत्पाद, निकोबार और मध्योत्तर अंडमान जिले के नारियल उत्पाद शामिल हैं। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के पात्र परियोजना लागत पर 35% की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति यूनिट है। समूह श्रेणी में कार्यशील पूंजी और उपकरणों की खरीद के लिए स्वयं सहायता समूह के

प्रति सदस्य को 40,000 रुपये की दर से बीज पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत उद्यमी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह आवेदन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य टीबी की देखभाल को मजबूत करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और टीबी उन्मूलन के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। टीबी मुक्त भारत ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे टीबी से संबंधित जानकारी और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मरीजों की सहायता के अलावा ये ऐप टीबी, उसके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में सटीक जानकारी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। इस ऐप की एक प्रमुख विशेषता निक्षय मित्र पहल के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को आसान बनाना है। आम जनता, संस्थान, कॉरपोरेट और संगठन इस ऐप के माध्यम से खुद को निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। ऐप में खुशी आपकी ई संगनी नाम से एक इंटरैक्टिव चैटबॉट भी शामिल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। डिजिटल मित्रा के लिए कार्निकोबार में 20 सीटें, फैजन डिजाइनर के लिए डीब्रेट में 20, टीवीईटी कैंबल बे में 20, टीवीईटी डिग्लीपुर में 20 सीटें और डीब्रेट में ऑटोमोटिव बॉडी पेंटिंग टेक्नीशियन के लिए 15 तथा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग तथा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर के लिए 20 सीटें उपलब्ध हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय के तहत वन स्टॉप सेंटर में साइको सोशल काउंसलर, बहुउद्देशीय कर्मचारी, रसोइयों और सुरक्षा गार्ड के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दी गई है। सूची विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। दावे या आपत्तियां प्रकाशन की तिथि से 5 दिनों के भीतर समाज कल्याण निदेशालय में जमा किए जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय में ग्रुप बी गैर राजपत्रित गैर मंत्रालयी पदों में स्नातकोत्तर शिक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणित और कृषि विषय के 40 पदों में भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार edurac.andamannicobar.gov.in पर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यटन विभाग की ओर से मानसून खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव का दूसरा संस्करण आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उद्योग विभाग आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस मिट्टी में हमारा बचपन बीतता है, वही मिट्टी हमारी पहचान बन जाती है। ये धरती केवल ज़मीन का एक भाग नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे सपनों, हमारे संघर्षों और अस्तित्व की पहचान बन जाती है। तभी तो हम गर्व से कहते हैं, जय हिंद।

मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली, पर्वतों की ऊंचाई और तिरंगे की शान, यही तो है हमारी सरजमी। दोस्तों, हम जब भी अपने वतन का नाम सुनते हैं, हमारा दिल गर्व से भर उठता है और आंखों में सम्मान की चमक छा जाती है। भारतीयता का भाव भर आता है हमारे हृदय में और हमारा मन कह उठता है।

दोस्तों, जब देश सबसे ऊपर होता है, तब हमारी पहचान, हमारी मेहनत और हमारे सपने सब एक ही नाम से जुड़ जाते हैं, भारत। जीत केवल मैदान से नहीं मिलती, बल्कि साहस, अनुशासन और एकता से हासिल होती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर टीम और देश के लिए सोचते हैं, तभी तो बनता है इतिहास। देशभक्ति का भाव हमारे कर्मों में जब उतर आता है, तब हमारा जोशीला मन कह उठता है, चक दे इंडिया।

देश रागिनी मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज है शुक्रवार, शक संवत

1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि यानी 17 जुलाई सन 2026 आज है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये दिन हमें न्याय, समानता, मानव अधिकार और शांति के उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर एक सभ्य और सशक्त समाज की नींव टिकी होती है। न्याय केवल अदालतों का विषय नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार होता है तभी समाज में विश्वास, सम्मान और सौहार्द का कायम रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, चाहे जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, सभी को सम्मान, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए।

महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत था इंसाफ का तराजू फिल्म से बोल साहिर के, धुन बनाई थी रविंद्र जैन ने। रंग, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं समीर तथा संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत था रंग फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ ना कहो फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है शान और साधना सरगम ने। गीत रचना जावेद अख्तर की।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर अहमद का लिखा एवं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया हुआ गीत लक फिल्म से, स्वर दिया सलीम मर्चेंट ने।

शान और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गीत था हेलो फिल्म से। बोल जली शेरवानी के धुन बनाई थी साजिद वाजिद ने। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी।
1: राष्ट्रीय पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन

0: संचालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: अक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों

0: महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in

नूर देवासी की रचना के बाद आइए अब सुनते हैं माधुरी जोगलेकर की लिखी गजल रूना लैला की आवाज़ में।

हरी हरन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल हसरत जयपुरी के, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

मजरूह का लिखा यह गीत था हम किसी से कम नहीं फिल्म से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की। धुन बनाई आरडी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और साथ ही गीत तथा संगीत रविंद्र जैन का।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो, मैं हूं एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
3: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
2: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
2: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
3: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
2: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
3: धन्यवाद दीदी।
2: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क

0: उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा एवं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत ब्रह्मचारी फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की।

कर्ज फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती FM श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इरशाद खान का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। तो आइए सुनते हैं इनका सितार पर बजाया राग पूरिया। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध है तथा इनके साथ तबले पर फजल कुरैशी ने संगति की है।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, नमस्कार। सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर्स से, सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि

0: 40 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम, जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं FM रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो कि FM रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं, और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं। छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं मैम।
0: वाह क्या बात है, तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल, ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करो।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती हैं, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया, तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियां सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है, तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए।
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैम मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।

0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप के ताऊजी के बच्चे, ताऊजी आपके
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: सब फौज में रहे, लेकिन
1: जी
0: आप चार भाई बहन,
1: जी
0: इनमें से कोई फौज में नहीं था।
1: जी
0: पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो
1: जी
0: कहते हैं कि कृषि जो है हमारे
1: जी
0: जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
1: जी
0: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति
1: जी
0: अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से दो या तीन, किसी के दो लड़के हैं, दो भी भर्ती उसी में सेना में, तीन है तीन भी। सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम, मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले, बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
0: वाह क्या
1: मेरे को
0: बात
1: देश
0: है,
1: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
0: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
1: जी
0: जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
1: जी
0: वापस लौट कर मत आना,
1: जी
0: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को। तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम। तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो ये जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है, महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
1: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
0: जी
1: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं। और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना,
1: जी मैम,
0: और
1: बिल्कुल
0: हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने, कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से। बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का ज़रूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे, और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे, और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं, बल्कि

0: काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, वो लोग जो सीमा में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी, वो
0: जी
1: भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समा था उस वक्त जब आप।

0: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं
1: अच्छा, कुछ
0: कई।
1: ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहाँ हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा
0: नहीं
1: स्रोत।
0: मैम ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते हैं। और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टॉप वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टॉप वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
1: सुखद रहा है
0: जी
1: मतलब।
0: जी
1: अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
0: जी मैम मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: वहाँ तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था? और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
1: जी,
0: मैम
1: ये तो आपने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम, मेरी
1: अच्छा,
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम, और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में भर्ती
1: तो
0: हुआ मैं
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी।
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं मैं
1: हाँ
0: नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ये ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत से कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न

0: मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आपके चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं, क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैम बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35 BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे DG साहब हैं, DG साहब ने जो है अपनी SSB को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का, और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो चार पांच जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियाँ होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में, संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए, तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैम
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था, उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो IPS IG संजय सर थे वो, और अपने जो है DIG सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर 2IC, नरपत सर DC, ये सभी आते थे, और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
0: वाह।
1: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
0: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ, किसी के साथ साझा किया था उस पर?
1: नहीं मैम, ये साझा तो
0: नहीं किया जाता उस वक्त ऑपरेशंस के दौरान,
1: मगर जो है टीम जो है एक ही

0: माइंड के एक माइंड सेट के सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैं कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है। बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: और
1: करते हैं।
0: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वो कोई भी हो अपना 7-7 दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
0: जी
1: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके
0: जी
1: सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DGDs मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
0: जी मैम,
1: आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
0: जी मैम,
1: जिनसे नवाजा गया आपको?
0: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है। डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DGDs मिली है, गोल्डन डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह, क्या
0: जी
1: बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए
0: जी
1: हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
0: जी
1: उनकी
0: मैम,
1: चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: मैम,
1: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
0: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं, ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे, तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NAG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NAG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो PTI इंस्ट्रक्टर था NAG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार, सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है, या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने, क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में

0: हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं, कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया।
1: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली, अब बच्चों पर जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: वाह क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें,
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
0: जी
1: तो
0: शुक्रिया।
1: ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भागिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं, FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं। कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल बवाने का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी हमारे हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना
0: जी
1: कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है,
0: जी
1: और मैं यही कहना चाहूँगा सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
0: जी एक और संदेश हमारे पास आया है CT दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें, और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सशस्त्र सीमा बल जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंटी

0: से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना, और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागेंद्र जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागेंद्र सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागेंद्र सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती FM श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1330वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी।
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थी।

0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्म बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
5: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
4: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
3: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
4: जी।
3: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
4: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
3: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
4: अच्छा?
3: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
5: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
3: हाँ बेटा क्यों नहीं।
5: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
3: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
4: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
5: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
3: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
5: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
4: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
3: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
4: माउंट एवरेस्ट।
3: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
4: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
3: भला वो क्या?
4: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
3: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने

0: ने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से

0: खोजा लेकिन बाद में।
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1330वीं कड़ी सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मने नि रखर हम इंगे तक लमक तेल नि मीडियम वे 400 8.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्ज रमांग एल नि आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनि निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: Min kahatalon hi inga sa kam. मिन कहतलोन ही तरन मिने महावत करे चोंग ने लखाई मिने कुन बनाम ही एम वी भारत सीमा चुह माय बंद तितिकलपुर इभुरे इतहर कइन रो तलाप हु ने लखनी फनिक्स पे चट्टी अचावन इप्तमा चु तरसिन अलांग ओचिंगेत इंटरनेट कइन रो सका मन रांग तितिकलपुर सक माय पंडर एंड मिन एल तलो के ने चु श्री विजयपुरम एम वी कैम्बल बे असुन गेन दनंग चु लिटिल न मान इप्तमा चु तरसिन अलांग ओचिंगेत इतहर कइन रो तलाप हु ने लखनी हेडवाफ ngachawan iphe itama chu atrakain ro ta tam narang nitilarama nang chu sri vijayapuram mv kalikhat kiran ngre phure na chu litilarama taka nikbar itasat kain ro talapu hu nalak ni hedwaf ngachawan itama chu tresin ala ngochinget itafen kain ro talaharap narang ka nikbar sek litilarama anmin entalaka ni chu sri vijayapuram mv kalikhat चूह लिटिलंडमान काय निकोबार चावरा तेरेसा कचाल नेनकोरी एल तलक निचूह कैम्बल बे इप्त नेर नाइलुई अलाउंगो चिंगेत इटसात कनरो तलाबुहु नलक नि हेडवाफ ngachawan इप्त नेर नाइ ताफुल अलाउंगो चिंगेत इतनेट सीन कनरो तसका मनरांग कैम्बल बे सक नेनकोरी कचाल तेरेसा चावरा काय निकोबार तलिटिलंडमान अनमिन एल तलक निचू श्री विजयपुरम नालंदा चूनन को तकंबल पे इप्तने नाय कहोक अलांगो चिंगेत इतमा चू तरकन रो तलाप हु नलक नि हेडवाफ ngachawan इप्तने नाय लुई अलांगो चिंगेत इत हेवर कन रो तलाप हु नरांग कैम्बल बे सकनेन को रि अनमिन एल तलो कर नि चू श्री विजयपुरम अनुनुन्ने मिन कहतलोन ही इंगि सकाम।

فان طليم عفول كو لين لول فان

Nen, Lur, Fen, Talin, Afur, Kau, Nen, Lur, Fen, Talin, Afur.

0: Ngat inday hang mini, tin ke ka nanya ap, ho iya nga tel nga ang in ngat sinta nga mu, hek in roj ay hang rong ito sa ato, ito fan ka nyo tala harap nga iyan.
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख

0: concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है महफिले कव्वाली कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे कव्वाल हैं मास्टर हबीब कव्वाल निजामी और बशीर अहमद। तो पहले पेश है मास्टर हबीब कव्वाल निजामी की आवाज में चंद कव्वालियां।

दिल का सुकूनों सब्र सब कुछ टूट जाता है, यकीनन चाहने वालों से रिश्ता टूट जाता है। गरज अपने दो

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस समय आप महफिल कव्वाली कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है हबीब अहमद बशीर अहमद की आवाज़ में चंद कव्वाली।

श्रोताओं, अभी आप महफिले कव्वाली कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे कव्वाल थे मास्टर हबीब कव्वाल।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000 947423400। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है दिल है तुम्हारा फिल्म से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त राज पैलेस उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार शर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन, पिंकी, कृष्णा और पीहू।

0: अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर एमपी से। सुदर्शन पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला और राजेंद्र की। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रू

अब सुनिए कबीर सिंह फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस ने।

हमारे अगले फरमाइश करता है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा। हमारे सभी दोस्त सुनना चाहते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत।

अभी आपने संगम फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमांश। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाते हैं उमराव जान फिल्म से। इस गीत को सुनने के शौकीन है हमारे ये दोस्त जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम, अर्वनम, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: In seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी

0: तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार

0: और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए।

0: यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एफएम मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के कुछ एक स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड्स।
0: दोस्तों, वक्त बदलता है, हालात भी बदल जाते हैं, सब्र रखने वालों के दिन भी समर जाते हैं। विश्वास रखो अपने मेहनत और इरादों पर, क्योंकि एक दिन सितारे भी तुम्हारे नाम हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो जल्दी से अपना नाम, पता व फ़ोन नंबर पंजीकृत करवाइए हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जुड़ते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं कपूरथला पंजाब से, पुरुषोत्तम शर्मा जी। हेलो डियर फ्रेंड्स
2: जी, नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार। पुरुषोत्तम जी से बात हो रही है?
2: जी बिल्कुल।
0: पुरुषोत्तम जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका भी कपूरथला पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। कैसे हैं आप?
2: मैडम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत इंतजार कर रहे थे, 3-4 महीने हो गए।
0: चलिए, आज जो है इंतजार का वक्त खत्म हो गया है ना, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दोस्त से एक मैरिज एनिवर्सरी थी 30 की।
0: जी जी।
2: एक के जन्मदिन है 9 जुलाई का था।
0: जी जी।
2: वो भी निकल गया।
0: अच्छा अच्छा, मिस हो गया, कोई बात नहीं। आज फिर हम आपको अपनी पसंद का गीत सुनवा देंगे ना, आपकी पसंद का जो सुनना चाहेंगे। नेक्स्ट बार जब आपको कॉल लगेंगी, उस वक्त शायद किसी का, आपके दोस्त का बर्थडे हो या कुछ भी हो सकता है।
2: बहुत से दोस्त हैं, किसी ना किसी का तो आता ही रहता है, एनिवर्सरी आएगी, जन्मदिन आएगा, लड़कों की शादी किसी की होगी, ऐसा।
0: जी जी। तो आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं हमसे, तो वो कौन सा गीत है जो इसका

0: कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम देखिए, सावन का महीना है हमारे तो इधर, 16 तारीख को कल ही चालू हुआ था देसी महीनों के हिसाब से सावन। तो इसका टाइटल सॉन्ग है ना, आया सावन झूम के।
0: जी जी, तो मतलब सावन को ही डेडिकेट करना चाहेंगे आप, है ना?
1: हाँ, इनको भी और जो दोस्त हैं हमारे मित्र
0: जी,
1: जैसे हमारे धर्मवीर भाई साहब हैं दिल्ली से, बहुत ही प्रेरणा स्रोत आदमी हैं।
0: जी जी,
1: उनके जीवन की जब वो कभी कभी बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो इंसान गिरे हुए ना वो भी खड़े होकर चलना शुरू कर देंगे।
0: जी,
1: और एक संदीप मक्कड़ जी हैं, बहुत ही हंसमुख इंसान है, लिखते भी और करते भी हैं थोड़ा बहुत, दिल लगाए रखते हैं जब भी से बात होती है।
0: जी
1: उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी निकल गई तो
0: चलिए,
1: चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने याद किया हमको।
0: जी जी, तो चलिए फिर हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके, थैंक यू मैडम जी,
0: वेलकम।

0: चलिए अब बात करते हैं विश्वजीत मिस्त्री से, जो कि रहने वाले हैं डिगलीपुर के। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, विश्वजीत जी से बात हो रही है।
1: जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अभी मैं पोर्टलैंड में था इससे पहले, साउथ अंडमान में, वहाँ से मेरा डिग्री को ट्रांसफर हुआ है
0: जी,
1: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में।
0: तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे?
1: यहाँ ठीक है मैडम, 3 साल पहले भी यहाँ साथ से गया था मैं।
0: अच्छा, तो मतलब डिगलीपुर का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम बहुत, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नॉर्थ मिडिल में ज़्यादा बारिश है।
0: अच्छा, ये बारिश हो रही है
1: जी
0: जी। चलिए अच्छी बात है, बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जो अभी किशोर फिल्म का एक गीत है जो अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया, ये खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, ये गाना
0: जी, बहुत ही प्यारा सा ये
1: सुना
0: गीत
1: देता
0: है
1: हूँ।
0: जी, ये आप किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: इससे सभी मेरे दोस्तों को ये
0: आपके
1: अच्छा लगता है, कभी गुनगुनाता हूँ
0: जी
1: बस।
0: जी
1: जी
0: तो गुनगुना लीजिए फिर।
1: नागेश, मेरा दोस्त, फिर मेरा भाई, तापस, ये सब डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: तो चलिए सब। जी जी
1: जी
0: बोलिए।
1: जी और 2 लाइन गाना चाहता हूँ।
0: हाँ जरूर, 2 लाइन गुनगुना दीजिए।
1: खैरियत पूछो कभी तो, खैरियत पूछो, तुम्हारे दिल दिमागे का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी है, खैरियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। थैंक यू।
0: वेलकम।

0: चलिए अब संपर्क साधा करते हैं सोहन मौर्य उत्तराखंड से। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: सोहन मौर्य से बात हो रही है।
1: जी मैम।
0: मौर्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया हैं मैम, आप सुनाइए, आप सब बढ़िया हैं?
0: हम भी बहुत ही बढ़िया है। और वैसे उत्तराखंड के क्या हालचाल है?
1: बढ़िया है, बरसात का मौसम बना हुआ है, बारिश पड़ती रहती है धीरे हल्की हल्की।
0: जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैम कपड़े सिलते हैं, टेलर हैं।
0: अच्छा, टेलर है। इसके अलावा क्या शौक रखते हैं?
1: गाने सुनने बहुत अच्छा लगता है।
0: कैसे गाने, नए या पुराने?
1: नए पुराने कोई से भी जो अच्छे लगे,
0: अच्छा, दो जो
1: नए
0: दिल
1: भी
0: को
1: अच्छे
0: अच्छे
1: लगते हैं
0: लगे।
1: पुराने भी।
0: जी, अच्छी बात है ना, जो दिल को
1: जी
0: अच्छे
1: मैम।
0: लगे वो गीत सुनना चाहिए।
1: जी
0: तो
1: मैम।
0: वैसे इस कार्यक्रम से आज जुड़े हैं, वो कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम के जरिए आप सुनना चाहेंगे?
1: मैम मूवी का नाम है मेरा गांव मेरा देश, और गाने के बोल हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए,
0: जी
1: बोल तेरे साथ से सुलूक किया जाए।
0: जी जी ये गीत हम आपको सुनवाएंगे ज़रूर।
1: दोस्तों
0: दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: तो नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं साथ में और भाई
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: चलिए।
1: पापा का नाम है श्री किशोर मौर्य।

0: चलिए अब जुड़ते हैं जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़ जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी। नमस्कार नमस्कार, पहुंच चुके आपके द्वार, कब से था इंतजार।
0: जी जी चलिए, आपके द्वार हम हाजिर हो चुके हैं, अब बताइए कैसे हैं आप।
1: हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया है, बहुत कृपा है भगवान जी की। और हमारे दोस्त हैं धर्मवीर जी, उनकी शादी की सालगिरह थी 8 तारीख से
0: जी,
1: तो अब कॉल ही नहीं आई आपकी, तो आज कॉल आई है, आज ही बधाई दी उनकी।
0: चलिए अच्छी बात है ना, जब कॉल आ गई है तभी जो है बधाइयाँ जो है उनकी तक तो पहुँच ही जाएंगी, है ना। आपके सभी
1: हाँ
0: दोस्त
1: हाँ
0: शायद आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे और आपकी फरमाइश भी शायद वे सुनेंगे, तो
1: जी।
0: जी जी तो
1: जब
0: हमें
1: उनकी
0: बता
1: शादी
0: दीजिए।
1: हुई तब तो हमारी मुलाकात नहीं थी,
0: जी
1: ना मुलाकात थी ना मुलाकात थी, आज मुलाकात है लेकिन दूर बहुत बैठे हैं हमारे से।
0: जी जी नहीं, गीतों के ज़रिए जो है उन तक पहुंच जा जा सकते हैं ना, पहुंचा जा सकता है गीतों के ज़रिए।
1: जी,
0: जी
1: चलो गीत सुना के खुश कर देते हैं।
0: तो चलिए फिर, कौन सा गीत आप इस कार्यक्रम में उन्हें सुनाना चाहेंगे।
1: जी हाँ, फिल्म है सड़क का आदमी, तो
0: आदमी सड़क का। जी जी
1: हाँ वो एड्रेस कहाँ का दिया उन्होंने,
0: जी जी उसका कौन सा
1: लड़की
0: गीत सुनना
1: वाले को
0: चाहेंगे आप।
1: हमारे धर्मवीर जी ने एड्रेस दिया सड़क का आदमी, पता
0: जी जी
1: नहीं कौन
0: लेकिन
1: सी वो
0: गीत
1: पता नहीं
0: कौन सा
1: ढूंढते
0: है।
1: ढूंढते कि नहीं आई शादी के उनको।
0: आवाज़ आ रही है आपको।
1: जी हाँ, आदमी
0: जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। आदमी सड़क का,
1: यार
0: आज
1: की
0: मेरे
1: शादी
0: यार
1: है।
0: की शादी है। जी जी
1: जी,
0: जी ज़रूर सुनवाएंगे हम आपको, तो चलिए फिर मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी हाँ, धर्मवीर जी हैं हमारे साथ में, पुष्करनाथ जी हैं, पंखीराम जी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से, और गांव कंट्री है, वो दोनों भाई हमारे हैं, ब्लाइंड है लेकिन
0: जी जी
1: बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे दोस्त। कोई भी हो तो उनको प्यार जरूर करे, जिनको सहारे की जरूरत है और प्यार की जरूरत है, दुनिया में इसी चीज की कमी है, कमी
0: जी जी
1: को दूर करें सबसे सबसे प्यार।
0: जी जी इसलिए प्यार बांटते चलिए, है ना।
1: जी,
0: जी चलिए फिर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: ब्रेक के बाद हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए बात करते हैं हमारे अगले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
3: हेलो,
2: विश्वजीत जी से बात हो रही है मेरी?
3: जी जी जी
2: जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत जी। त्रिपुरा के क्या हालचाल हैं?
3: त्रिपुरा का तो मौसम बहुत ही ठंडा है, तो अभी तो बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा अभी धूप निकला है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
2: जी जी। त्रिपुरा में आप कौन से जिले में रहते हैं वैसे?
3: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
2: जी जी। तो वहाँ का मौसम जो है, बरसात हो चुकी है? बरसात होने वाली है या हो रही है?
3: हो रही है, अभी भी हो रही है।
2: जी जी जी। चलिए, वैसे आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, बरसात का, गर्मी का या फिर ठंड का?
3: हमारा इधर तो वर्षा, गर्म, शीत, तो जितना मौसम 12 महीने का सब हमारा इधर रहता है। हमारा परिवेश बहुत ही अच्छा है।
2: मतलब सभी मौसम आप पसंद करते हैं?
3: हाँ हाँ।
2: चलिए अच्छी बात है जी।
3: मेरे को गाना सुना दीजिए, हिम्मत बना मूवी से। गाना का लाइन है, नैनो में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल लगाया।
2: जी जी, बहुत ही प्यारा से गीत है ये।
3: तो मैंने एक बात भूल गया आपसे बताने के लिए। मैं लाइट को, तो मैं रेडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है
2: जी,
3: तो इसीलिए रेडियो का मैं दोस्त बन गया।
2: अच्छा, दोस्त बन गए हैं, फैन बन गए हैं ना? चलिए अच्छी बात है, जानकर हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे दोस्त जो है रेडियो सुनते हैं, अपनी बातें बताते हैं रेडियो के बारे में, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। आज इस कार्यक्रम में आज आप हमसे जुड़े जी।
3: डिजिटल होने के बाद रेडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है
2: जी। चलिए अच्छा है ना, दूर दूर तक आवाजें पहुंचती है, एक दूसरे से संपर्क होता है, जुड़ते हैं, है ना? रेडियो के माध्यम भी दोस्त बनते हैं, है ना?
3: जी जी जी
2: जी जी।
3: तो मैं दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
2: जी जरूर।
3: मेरे साथ सुनेगा अविनाश तेली जी, भगवान भैया जी, और सुनेगा जितना भी दोस्त अभी सुन रही है सबके लिए और आपके लिए ये डेडिकेट रहेगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़े। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: जी जी जी। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: चलिए दोस्तों, अब संपर्क साधा करते हैं केशव प्रजापति जी से, जो कि गांधीनगर दिल्ली के रहने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, केशव जी से बात हो रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको?
2: हाँ जी मैम,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, आपको आवाज आ रही है ना?
2: हाँ जी आ रही है मैम।
1: जी वैसे केशव जी, क्या करते हैं आप दिल्ली में?
2: जी मैम, अपना वहीं पे घर है और अब शॉप है अपनी, मार्केट है बहुत बड़ी होलसेल की।
1: जी जी
2: हमारा कपड़ों का होलसेल का।
1: जी, इसके अलावा और क्या शौक रखते हैं आप कपड़ों के बिजनेस के
2: मैम?
1: साथ साथ?
2: शौक तो ऐसे मैम पतंगबाजी का भी है, क्रिकेट का भी है मैम, स्विमिंग
1: अच्छा
2: भी
1: अच्छा
2: करता हूँ मैं।
1: तो आपको वक्त मिल जाता है?
2: मैम वक्त निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए।
1: चलिए, अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है तभी जो है इंसान कामयाब हो जाता है ना?
2: जी, और मैम वैसे भी 15 साल तो हमारे यहाँ पे लाल किले पे मोदी जी भी आते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तभी आते हैं मैम देखने वाले, झंडा फहराते हैं मैम,
1: जी जी
2: बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ भी आती हैं यहाँ पे।
1: तो मतलब आप जो है हर साल जाते हैं ना? चलिए, अच्छी बात है। तो इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: मैम गाने के बोल रहे हैं जिन के गीत सावन गाए, क्योंकि आज दिल्ली ऐसा है मौसम।
1: जी जी
2: जी, और एक बात मैम ये बोल रही है, जैसे कि तनुश्री जी है महाराज से,
1: जी
2: तो उन्होंने जैसे हैंडीकैप है तो ब्लाइंड है, तो उन्होंने मैम पढ़ाई छोड़ दी है 10th करने के बाद, तो मैं प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इनको आगे पढ़ाई करनी चाहिए ऑनलाइन। दिल्ली में भी काफी स्कोप है इसका, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, वो आई मतलब मैनेजर बने हुए हैं SBI के अंदर, दोस्त भी मेरी, तो वो कहते हैं कि पढ़ाई आगे करनी चाहिए तो फ्यूचर अच्छा रहेगा इसके लिए।
1: जी जी जी सही बात आपने कही है, ऐसे पढ़ाई नहीं छोड़नी
2: जी
1: चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए ज़रूर। तो
2: और
1: आपने
2: मेरी
1: अरिम
2: बात
1: झिम,
2: सुनिए सभी के लिए,
1: अंजाना
2: और
1: मूवी
2: जैसे
1: का
2: मैं
1: आपने बोला है ना, अंजाना मूवी, अरिम झिम के गीत।
2: रिंजिंग के गीत सावन गाए मैम।
1: जी जी
2: मैम गाना कुछ दोस्तों को याद कर लूँ मैम?
1: हाँ ज़रूर ज़रूर।
2: जैसे मैम तनु जी आप ही के लिए पहले, और मेरे फादर हैं धर्मवीर जी, भाई है नितिन कुमार, और पापा के थोड़े फ्रेंड हैं जैसे पुरुषोत्तम अंकल जी हैं, सुतुपा मैम है, वो संदीप जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, बुलदीप दास जी हैं, विश्व जी, तन्नू श्री जी, रमेश प्रजापति जी, अमल जी, केसरी जी, भगवान जी, सभी के लिए मैम जितने भी हैं,
1: तो चलिए
2: और
1: फिर।
2: राकेश जी, गोल्डी जी, सभी के लिए मैम।
1: जी जी चलिए, तो फिर सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जी मैम, तन्नू श्री जी के लिए भी मैम।
1: जी
2: ठीक है,
1: जी जी
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: और अब चलिए इस कार्यक्रम में हमारे आखिरी दोस्त से बात करते हैं, जो कि करीमगंज असम से हितेंद्र जी। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: हितेंद्र जी से बात हो रही है?
1: हाँ मैम, मैं हितेंद्र दास बोल रहा हूँ।
0: जी हितेंद्र जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ थैंक यू।
0: हितेंद्र जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ और स्कूल में पढ़ाता हूँ प्राइवेट।
0: अच्छा, आप टीचर हैं।
1: हाँ
0: इसके अलावा आप क्या शौक रखते हैं गानों के?
1: इसके अलावा आकाशवाणी सुनना शौक है बहुत।
0: चलिए, अच्छी बात है। हमारे पास जो है,
1: सुबह से लेकर रात तक आकाशवाणी सुनता हूँ।
0: जी, मतलब जैसे ही स्कूल से निकलते हैं आप आकाशवाणी से जुड़ जाते हैं, है ना?
1: हाँ आकाशवाणी सुनता हूँ, लेकिन कहाँ भी जा रहा हूँ, या बस से या ट्रेन में जा रहा हूँ, फिर मोबाइल में चल रहा है आकाशवाणी अपना चैनल।
0: जी, तो चलिए हमें जानकर खुशी हुई। जो है आप चलते चलते भी जो है आकाशवाणी को साथ लेकर चलते हैं ना, तो इस कार्यक्रम
1: हाँ
0: से आज आप हमसे जुड़े हैं, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई मिल गया मूवी से टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: जी, तो फिर चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आप जो है इस कार्यक्रम के हमारे आखिरी दोस्त हैं, तो समय ना जाया करते हुए आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: अच्छा थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। इस कार्यक्रम से चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी की किताब का हर पन्ना नया होगा। आज का संघर्ष कल का फक्र होगा। चलते रहो बिना रुके, क्योंकि एक दिन हर सपना सच होगा। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

है हम सफर मेरा तो कारवां कुछ भी नहीं, तू है हम सफर मेरा तो कारवां कुछ भी नहीं, अब तो हर कदम मंजिल है रास्ता कुछ भी नहीं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं आइए आज सफर करते हैं हम सफर के साथ।

हम सफर तो साथ चलते हैं, रास्ते तो बेवफा बदलते हैं। उसका चेहरा है जब से मेरी आंखों में, उसका चेहरा है जब से मेरी आंखों में, जाने क्यों लोग मेरी आंखों से जलते हैं। श्रोताओं, जब सफर नया नया हो और हम सफर हो साथ, तो फिर लोग जलेंगे ही, लेकिन साथ चलने वालों को दुनिया की क्या परवाह। वो हम सफर जिनके साथ हम जीने मरने के कस्में खाते हैं, वो आंखों के पास हो या दूर, फासले मायने नहीं रखते।

क्या खूब ये सफर चलता जो तू हम सफर मिलता, मंजिल तू हमसे छिन गई अब तो रास्ता भी नहीं मिलता। काश होता मुमकिन मुकद्दर बदल पाता, पर अफसोस कि तकदीर का लिखा यूं नहीं मिट पाता। दोस्तों, अपने हम सफ़र को पाने की चाहत रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों से लड़ने का हौसला देती है और यही कोशिश प्यार को मंजिल तक पहुंचाती है।

श्रोताओं, गीत संगीत हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में गीत संगीत से जुड़ा होता है। संगीत के बिना जीवन बेजान सी हो जाती है, और अगर यही गीत संगीत हम सफर बन जाए तो फिर क्या बात है। हवाओं के बिना फिजाओं में गुरूर न होता, हवाओं के बिना फिजाओं में गुरूर न होता, चांदनी को भी चांद बिना गुरूर न होता। आप जैसा हम सफर न होता तो दिल भी शायरी करने को मजबूर न होता।

श्रोताओं, हम सफर के बिना कोई भी सफर अधूरा है। हम सफर साथ हो तो वीरानी जिंदगी में भी बाहर आ जाती है, और हम सफर अगर साथ हो तो ऐसा लगता है कि सारे जहां की खुशियां हमारी झोली में आ गई हो।

तो श्रोताओं, हम सफर के साथ आज का ये सफर बस यहीं तक। हर रास्ता अनजाना सा, हर फलसफा नादान सा, हर रास्ता अनजाना सा, हर फलसफा नादान सा, सदियों पुरानी है मगर, सदियों पुरानी है मगर, हर दिन नई है जिंदगी। तो श्रोताओं, जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हम सफर का साथ निभाते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थीं मीना प्रकाश। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र है। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के।

अभिभावक बन के बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को

दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन से

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
2: जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराय शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियाँ बताती हैं अब वहाँ भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर, अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए खुद पर भी भरोसा कैसे।

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पेश है तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। पेश है बांग्ला कार्यक्रम।
1: নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত।

नमस्कार, मिट्टी की खुशबू और मेहनत की कहानी लेकर मैं रागिनी हाजिर हूँ और आप सभी किसान भाई और बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस कृषि जगत कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते ही हो कि कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार से किया जाता है और नेक विचार है, दूसरों के काम आना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो हाथ सेवा में उठते हैं वही भगवान के सबसे करीब होते हैं। जी हाँ साथियों, जो लोग अपने हाथों से दूसरों की सेवा करते हैं, किसान खेत में मेहनत करता है, डॉक्टर मरीज देखता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे लोग भगवान को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम इंसान इंसान के काम आए। सही शब्दों में यदि कहा जाए, नेक कमाई, नेक नियत और नेक मदद, यही असली धर्म है। जैसे खेत में बीज बोगे तभी फसल आएगी, वैसे ही दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी जिंदगी में बरकत आएगी। किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा अच्छे व नेक कार्य करने चाहिए। चलिए इस नेक विचार के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, पशु आहार में चारे और दाने का क्या अनुपात होना चाहिए? साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, पशु आहार में चारे और दाने का क्या अनुपात होना चाहिए? किसान भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले

0: जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: पानी है तो कल है, और कल को बचाने के लिए आज हमें कैच द रेन करना होगा, यानी बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से बचाओ। तो किसान साथियों, आइए सुनते हैं कैच द रेन, इसी संदर्भ में एक चर्चा। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब यह है, बारिश जहां गिरे, जब गिरे, वहीं उसे पकड़ो और बचाओ। बारिश के पानी को नाली में बहने के बजाय जमीन में उतारो या स्टोर कर लो। छत का पानी पाइप से सीधा टंकी में या सोखता गड्ढे में डाले। पुराने तालाबों की सफाई और नए चेक डैम बनाना। खेत के चारों तरफ मेड़ बनाकर पानी रोके। खेत में छोटा तालाब बना ले। पार्क में रिचार्ज पिट बनाए ताकि पानी जमीन में जाए। पानी है तो कल है, इसलिए हम सब यह संकल्प ले कि एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कैच द रेन करेंगे। किसान साथियों, अभी आप कैच द रेन के संदर्भ में चर्चा सुन रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसी खेती की जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे, एक ऐसे काम की जो कम जगह, कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा दे सके। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ मशरूम की काश्त की। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे मशरूम उगाने का आसान तरीका, लागत और बाजार। आइए सुनते हैं मशरूम की काश्त के संदर्भ में डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से की गई यह बातचीत।
4: साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे मशरूम की खेती के संदर्भ में। खास तौर पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मशरूम आप कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं कि डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि हमारे इन द्वीपों में जहाँ तक मशरूम की खेती का सवाल है, संभावनाएं कितनी हैं?
5: देखिए, हमारे द्वीपों में मशरूम का संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर हम एक बार कंपेयर करते हैं इंडिया का और वर्ल्ड का और अपने अंडमान का, तो इंडिया में जो है टोटल जो है मशरूम उगाया जाता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगाया जाता है। जो वेस्ट को हम सही एनर्जी में कन्वर्ट करके हम मशरूम उगाते हैं। तो अंडमान में जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के अनुसार जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको हम सही रूप से प्रयोग करके मशरूम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। एक वर्टिकल फार्मिंग है, एक रूम के अंदर इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इस वजह से ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं है, और घर के अगल बगल अगर छोटा सा स्पेस है उसके अंदर हम इसका खेती आराम से कर सकते हैं, और ज्यादा लेबोरियस नहीं है। लेडीज लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि घर में बैठ के अपना बच्चों को देख के ये मशरूम खेती कर सकते हैं और एक इनकम जनरेशन कर सकते हैं।

0: जैसे आपने कहा कि कृषि से जो भी या जो दूसरे हमारे जो संसाधन है जो कि हमारे इस्तेमाल का नहीं है उसके इस्तेमाल कर हम मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मशरूम उत्पादन तो कर लें, क्या मशरूम में इतनी न्यूट्रिशन होती है कि लोग इसे खाना पसंद करेंगे या खाना चाहिए लोगों को?
1: देखिए, मशरूम में तो न्यूट्रिशन पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि अगर हम लो कैलोरी फूड की बात करते हैं तो उसमें मशरूम सबसे टॉप रैंकिंग है। यूएस ने इसको जो है सुपर फूड के नाम से भी दिया हुआ है। तो मशरूम के अंदर अगर देखा जाए तो सभी प्रकार का जो है आपका प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, सभी बैलेंस फॉर्म में पाया जाता है। अगर प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन 15 से लेके 35% जो मशरूम का पार्ट होता है वो प्रोटीन के रूप में उसमें अवेलेबल होता है। अगर विटामिन देखा जाए तो इसमें विटामिन B, C, D करके अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा जो है विटामिन जो नियासिन है, एंटी प्लेगरा बोलते हैं, जो पोर्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो हमारे मशरूम में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर इसमें जो है एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड दो प्रकार के है, लिमिटिंग एमाइनो एसिड है और जो है इसेंशियल नॉन इसेंशियल, सभी एमाइनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है। और एक खास कर का जो लाइसिन है जो सीरियल्स में भी लैकिंग होता है, वो मशरूम में पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मशरूम एक जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में
0: खासतौर पर
1: शाकाहारी लोग, जिसमें आपका विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सभी प्रकार की चीजें। इसके अलावा बहुत सारा जो है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो कि इम्यून बूस्टिंग के लिए और भी जो है आदमी शरीर के अंदर जो है एंटी माइक्रोबियल जो है एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए वो काम में आते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हमारे इन द्वीपों में मशरूम की बात जब हम करते हैं तो यहाँ सिर्फ लोग जो ऑयस्टर मशरूम जिसे कहते हैं उसी के बारे में जानते हैं, क्या दूसरी किस्म के मशरूम्स भी यहाँ पर उगाए जा सकते हैं?
1: हाँ जी हाँ, देखिए मशरूम जो है हमारे पास जो है टोटल 12 मशरूम है ऑल ओवर इंडिया में जिसको कल्टीवेशन में लाया जाता है, लेकिन अंडमान क्लाइमेट में 4 मशरूम का कल्टीवेशन किया जा सकता है, चार, जिसमें जो है प्लोरोटस मशरूम ऑलरेडी कल्टीवेशन में है। इसके अलावा जो है मिल्की मशरूम जो कैलोसाइब इंडिका है उसका भी हम कर सकते हैं। एंटी कैंसरस मशरूम है लेंटिल्यूला, जिसको सिटाके मशरूम बोलते हैं, उसको भी हम कल्टीवेशन में कर सकते हैं। एक वोल्वोरेला बोलते हैं, वोल्वोरेला वोल्वेशिया ना, जिसको पेडिस्ट्रा मशरूम बोलते हैं, उस मशरूम की भी खेती बहुत आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है। ये चारों मशरूम का संभावना है यहाँ पे। और इसका जो है एक और यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे टूरिस्ट एरिया ज्यादा है, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग जो है बाहर से आते हैं यहाँ पे, और मशरूम जो है हमारा मेनली जो मशरूम जो बाहर से खरीद के आता है उसका कास्ट भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लोगों के पास वो अफोर्डेबल नहीं है कि उसका परचेज कर सके। अगर यहाँ पे मशरूम उगाया जाएगा तो सबको चीप भी होगा और सबको अवेलेबल भी होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, मशरूम उगाने के लिए अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है तो किस तरह से वो शुरू कर सकता है, क्या क्या चाहिए?
1: देखिये, मशरूम उगाने के लिए जो है एक टाइम पे टाइम ट्रेनिंग दिया करते हैं, उसके अंतर्गत वो पूरा सिखाया जाता है कैसे कैसे उसका प्रक्रिया है मशरूम उगाने का, एक तो वो है। वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मशरूम उगाने के लिए एक आइडियल हाउस होना है। अगर हम 10x15 का अगर फुट का अगर हाउस रखते हैं तो आइडियल है, यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार से छोटा एरिया भी रहेगा और उसको मैनेज भी हम इजीली कर सकते हैं। उसमें नियर अबाउट आप जो है 100 bag तक आप मशरूम उगा सकते हैं। तो उसके लिए एक जो है आप घर जो है बनाने का जो तरीका है सर, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप RCC बिल्डिंग भी बना सकते हैं, आप बम्बू चटाई का बना सकते हैं, आप लकड़ी का लोकली अवेलेबल नारियल पत्ता इसका भी एक छोटा सा घर बना सकते हैं। एक घर होना चाहिए, घर के पास जो सबस्ट्रेट है, अगर आपके पास पेडिस्ट्रा अवेलेबल है तो पेडिस्ट्रा, आपके पास अगर बनाना लीफ है तो बनाना लीफ यूज कर सकते हैं, कुछ ग्रासेस को भी आप यूज कर सकते हैं, सार्डस्ट भी के ऊपर आप मशरूम उगा सकते हैं। पॉलिथीन बैग की आपको जरूरत पड़ेगी, स्पॉन का जरूरत पड़ता है, KVKM अवेलेबल है, कभी कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी स्पॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये सब तरीका है, वहां से आप स्पॉन ले सकते हैं और मशरूम को उगा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत सारी चीजों पर मशरूम को उगाया जा सकता है, जैसे कि धान के पुआल का जिक्र किया, अक्सर आजकल इसकी भी खासतौर पर दक्षिण अंडमान में इसकी किल्लत हो जाती है। तो इसके अलावा आपने जैसे बताया कि जो केले के सूखे पत्ते हैं या जो भूसा होता है, जो लकड़ी का बुरादा होता है, क्या इसमें भी अच्छा से हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए जो पुआल है, पुआल के बाद नेक्स्ट रैंकिंग आता है केला पत्ती, केला भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा हरा जो केला हार्वेस्ट करने के बाद से जो चीज बचता है उसको ड्राई करना है, अच्छा फ्रेश लीफ को काट करके आप ड्राई कर लीजिए, उस पर आप मशरूम उगाइए, अच्छा सा होगा। अगर हम लकड़ी की भूसी करते हैं तो लकड़ी की भूसी बहुत लोग फेंक देते हैं, लकड़ी की भूसी ले ली, 1 part जो है आप जो है ब्रान, राइस ब्रान, 1 part राइस ब्रान, 3 part लकड़ी की भूसी, और उसमें थोड़ा सा चीनी माल मिला दीजिए और कैल्शियम कार्बोनेट चूना अपने 1-2 चम्मच मिला के अच्छे से उसको मिक्स करके उसको पॉलिथीन में बैग में रख के स्टीम देने से, ड्रम के अंदर स्टीम देने से वो अच्छा सा उसके हो जाएगा। स्पॉन भी उसमें ऊपर मिलाना है, ऊपर मिला के उसको कवर कर दीजिए तो उसमें भी अच्छा सा मशरूम आ जाएगा। छोटा सा बैग होगा आपका जो है, नियर अबाउट 10 inch का बैग अगर रहता है आपका, उसमें आराम से आपको 500 ग्राम मशरूम मिल जाएगा।
0: तो डॉक्टर साहब, जो यहाँ पर किसान करते हैं धान का पुआल और आपने बताया कि जो केले का जो सूखा पत्ते को सुखा कर उसका इस्तेमाल किया, इन दोनों का तरीका अमूमन एक ही है?
1: एक ही है जी, केला पत्ती और धान का पुआल का तरीका एक ही है। उसको हम क्या करते हैं, पहले फ्रेश पुआल लेके आइए, सुखाइए उसको, सुखाने के बाद से उसको चॉप करते हैं, छोटा छोटा जो 4 cm के आसपास उसको चॉपिंग करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद

0: उसको हम उबालते हैं। उबालने के लिए हम जो है 45 मिनट तक उबालते हैं। इसको टेम्परेचर 80-100 डिग्री के आसपास रहता है। उबालने से एक तो पुआल सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर कीड़े का अंडा या कुछ फफूंद का स्पोर रहने से वो किल हो जाता है, मर जाता है। फिर उसको हम एक जाली बनाते हैं, नेट बनाते हैं, नेट के ऊपर पुआल को उबालने के बाद उस पर फैला दें। फैलाने से क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है, ज्यादा पानी है, वो निकल जाता है। निकलने के बाद से आप पुआल को लेके मुठ्ठा में लेके उसको निचोड़ना है। निचोड़ने से अगर एक दो बूंद पानी आता है, इसका मतलब सही है। ज्यादा पानी आ रहा है तो आपको थोड़ी देर और उसमें वेट करना है। इंतजार करने के बाद जब एक दो बूंद पानी आता है, फिर आप क्या कीजिए, 1-2 केजी का पॉलिथीन बैग ले लीजिए, उसमें आपको पुआल को लगाइए, डालते हैं नीचे वाले लेयर में, और उसमें थोड़ा सा स्पॉन रिंग के साइड में किनारे पेरीफेरी में डालते हैं, फिर इसमें पुआल डालते हैं, ऐसा 4-5 लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद उसको धागा से बांध दीजिए। बांधने के बाद उसमें होल करते हैं, नीचे 4-5 होल साइड में और ऊपर कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर मशरूम ग्रो करता है तो कुछ गैसेस निकलते हैं, तो गैसेस उसके द्वारा निकल जाएंगे, वेंटिलेशन रहेगा तो मशरूम अच्छा सा ग्रो करेगा। फिर जो है इतना प्रक्रिया करने के बाद से हम उस बैग को एक डार्क रूम होता है या कहीं भी जहां लाइट डायरेक्ट नहीं आता है, उस रूम में ले आके रख देते। तो वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, अगर फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेन है तो वो आपका जो है 10-15 दिन के अंदर पूरा सफेद हो जाता है। व्हाइट होने के बाद से वो पॉलिथीन फाड़ के उसमें से पिन निकलता है, जिसको हम पिन इनिशिएशन बोलते हैं, वो हेड के तरह। जैसे पिन निकलता है उस समय फार्मर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उस समय से हम मशरूम को अलग अलग फैला देते हैं। फैलाने के बाद से दिन में 1-2 बार पानी देते हैं, अगर ज्यादा गर्मी है तो 2 बार देते हैं, फवारा के रूप में देते हैं। देने से फिर उसमें मशरूम खिलने लगता है। जब मशरूम पूरा खिल जाता है तो उसका हार्वेस्टिंग करके पैक करके आप मार्केट में बेच सकते
1: हैं। जब सफेद सफेद पूरा हो जाता है, पिन हेड्स आने लगते हैं, तो क्या उस पॉलिथीन को काट के निकालना पड़ता है या ऐसे छोड़ देते हैं?
0: जी, उसमें सिर्फ दो प्रक्रिया है। जैसे अगर हमारे पास मशरूम, अगर हम कमर्शियली के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे पास 100 बैग है, तो 100 बैग में हम प्रीफर करते हैं कि हर 5वां बैग जो है ओपन करना है। जब एक फर्स्ट हार्वेस्ट आप उससे ले लीजिए, पॉलिथीन से ही मशरूम फाड़ के निकलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर 5वां बैग को ओपन कर देते एक बार हार्वेस्ट के बाद, क्योंकि क्या है, पॉलिथीन में रहने से उसका कंट्रोल ग्रोथ है, लिमिट ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे हम पैकेट को ओपन करेंगे, बहुत ज्यादा मशरूम एक ही साथ निकलता है। तो इसमें क्या है, अगर हम कंट्रोल ग्रोथ रखते हैं तो हम मार्केटिंग बिजली कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार बहुत ज्यादा ग्रोथ आने से कई बार मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, या आपको डिमांड देखना। अगर डिमांड है तो आप 2-4 पैकेट 5 पैकेट ओपन करते जाइए, उसमें से बहुत ज्यादा मशरूम निकलेगा, फिर आप उसको इमीडिएट दे सकते हैं। अगर आपके पास स्लो डिमांड है तो आप 5वां पैकेट खोल दीजिए, आपको जो है डेली के आसपास से 1-2 केजी के आसपास मशरूम मिलेगा, आप इजिली मार्केट में दे सकते।
1: डॉक्टर साहब, कितनी बार कटाई होती है एक बैग से?
0: देखिए, एक बैग से हम टोटल जो है 3-4 हार्वेस्ट करते हैं। 3-4 हार्वेस्ट में अगर 1 केजी का भीगा हुआ बैग है, हम ड्राई बैग की बात नहीं करें, अगर भीगा हुआ बैग है तो उसमें 800 ग्राम, समटाइम आप अच्छा स्ट्रेन है तो 1 केजी भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको टोटल 45 डेज की साइकिल होती है, आप स्पॉन मिलाने से लेके वहां तक निकालने से, तो आपका जो है 20 दिन चला जाता है माइसिलियल रन में व्हाइट होने में, और जो है बाकी जो है आपका 30 डेज या 25 डेज जो है मशरूम निकलने में लगता है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार। तो 45 डेज के अंदर आप आइडियली है कि एक बैग से आपका लागत मैक्सिमम 50 रुपये आता है, उसमें से आप जो है एक बैग से आप 250-300 रुपया कमा सकते हैं। उसमें 50 रुपीज अगर लागत को हटा दें तो 200-250 रुपीज पर बैग आप नेट अर्निंग आप कर सकते हैं, इसमें ये कैपेसिटी है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जब मशरूम निकल जाता है, जो बैग बच जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी कंपोस्टिंग वगैरह के लिए?
0: एक्चुअली ये तो यही एक इकोलॉजिकल साइकिल है, जिसको बोलते हैं जैविक प्रक्रिया। हमने क्या किया, पुआल से या केला पत्ती से उसका लिया, लेने के बाद से उसको जो है जो वेस्ट है उसका हम क्या किया, मशरूम उगा लिए। उसके बाद से भी जो उसमें बचा हुआ है तो ऑलरेडी हाफ डिग्रेडेड है, मशरूम एक फंगस है, हाफ डिग्रेडेड है। उसको जो है, जो बैग हमारा जो है 45 डेज बाद से जब यूज होता है तो बैग श्रिंक हो जाता है। पहले बैग टाइट रहता है, बाद में जब उसका न्यूट्रिशन मशरूम यूटिलाइज कर लेता है तो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। फिर उसको जो हम कंपोस्ट बनाने में हम भेज देते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट का एक बेड ले लीजिए, आजकल जो रेडीमेड भी आता है पॉलिथीन का, आप अच्छा सा बैग ले लीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए, उस बैग को डाल दीजिए। डालने के बाद आप वर्म भी इनाकुलेट कर सकते हैं। वर्म अगर इनाकुलेट नहीं करते हैं तो सिंपली आप उसमें वाटर थोड़ा सा स्प्रे करने से वो डिग्रेड हो जाएगा। 2 महीने में डिग्रेड होने के बाद उसको फिर से आप जो है मिट्टी में मिला के पेडिस्ट्रा या जो भी अपने अगल बगल किचन गार्डनिंग या वेजिटेबल आराम से उगा सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि जो मशरूम की खेती है वो काफी लाभदायक है, क्योंकि ये जो अपशिष्ट पदार्थों से शुरू होती है और उसके बाद जो बचता है उसका फिर से हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक जैविक पूरी सर्कल। तो आपने इतनी सारी बातें बताई, और जैसे आपने बताया कि अगर कोई किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू, नमस्ते।
2: मशरूम की खेती के बारे में हमने इतनी अच्छी जानकारी ली, अब थोड़ा मन को भी तरोताजा कर लेते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

अब साथियों चलते हैं वापस अपने काम की बात पर। जैसे कि किसान भाइयों, हम सब जानते ही हैं कि वन महोत्सव उत्सव चल रहा है। वन महोत्सव क्यों जरूरी है, आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक और चर्चा।

साथियों, पेड़ हमारे सबसे बड़े दोस्त है, जो बिना कुछ मांगे हमें छाया, फल, दवा और सबसे जरूरी सांस देते हैं। लेकिन आज पेड़ कम हो रहे हैं, इसलिए गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है। इसीलिए वन महोत्सव मनाया जाता है, ताकि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वन महोत्सव जरूरी भी है और इसके निम्नलिखित कारण भी है। पहला कारण है ऑक्सीजन। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एक बड़ा पेड़ कम से कम 4 लोगों को एक दिन की ऑक्सीजन दे सकता है। दूसरा कारण है मौसम। पेड़ बारिश लाते हैं, गर्मी कम करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। और तीसरा कारण है जीवन। पेड़ों से हमें फल, दवा, लकड़ी और जानवरों को घर मिलता है। बिना पेड़ जीवन नहीं, हरियाली होगी तो खुशहाली होगी। साथियों, आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि इस वन महोत्सव पर हम कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी करेंगे, क्योंकि एक पेड़ एक जीवन। पेड़ है तो कल है। याद रखिए, पेड़ है तो पानी है, पेड़ है तो खेती है, पेड़ है तो जीवन है। इसलिए वन महोत्सव मनाओ, पेड़ लगाओ।

0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे वन महोत्सव क्यों जरूरी है, इस संदर्भ में एक चर्चा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एलोवेरा को हम घृत कुमारी भी कहते हैं। ये दिखने में छोटा सा पौधा है लेकिन गुणों की खान है। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं एलोवेरा के बारे में थोड़ी जानकारी।
1: एलोवेरा प्राचीन समय से ही चिकित्सा जगत में बीमारियों को उपचारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। एलोवेरा के गुणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम सभी ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया है। एलोवेरा में अनेकों बीमारियों को उपचारित करने वाले गुण मौजूद होते हैं। एलोवेरा एक बार लगाने पर 3 से 5 साल तक उपज ली जा सकती है और इसे खेत की मेड़ पर भी लगाया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। एक, आपके खेत में कोई आवारा पशु नहीं आएगा। आपके खेत की मेड़ बंधी भी हो जाएगी। एलोवेरा को कोई जानवर भी नहीं खाता है। आपको अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। आइए अब एक नज़र डालें एलोवेरा के मृदा एवं जलवायु पर। प्राकृतिक रूप से इसके पौधे को अन उपजाऊ भूमि में उगते देखा गया है। इसे किसी भी भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसका अधिक उत्पादन होता है। आइए अब जानें कि एलोवेरा की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान के द्वारा उन्नतशील प्रजाति सिम शीतल L125 और 49 एवं को खेतों में परीक्षण के उपरांत जारी किया गया है और इन जातियों से अधिक मात्रा में जेल की प्राप्ति हुई है। इनका प्रयोग व्यावसायिक खेती के लिए किया जा सकता है। एलोवेरा में रोग एवं कीट नियंत्रण से बचने के लिए एवं साथ ही पौधों को गिरने से भी बचाया जा सकता है। पौधों पर रोगों का प्रकोप कम ही होता है। कभी कभी पत्तियां एवं तनों के सड़ने एवं धब्बों वाली बीमारियों के प्रकोप को देखा गया है, जो कि फफूंदी जनित बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब रिडोमिल डाइथेन M45 का प्रयोग 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करने से किया जा सकता है। ग्वार पाठा के पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु खेत में हल्की नमी बनी रहे व दरारें नहीं पड़ना चाहिए। इससे पत्तों का लुबाब सूख कर सिकुड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में संभालना ज्यादा जरूरी होता है।
2: एलोवेरा के एक स्वस्थ पौधे से लगभग 400 ग्राम गूदा निकलती है।
0: अभी आप एलोवेरा के बारे में जानकारी सुन रहे थे।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि पशु आहार में चारे और दाने का क्या अनुपात होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पशु आहार में 3 भाग चारे के साथ 1 भाग दाना होना चाहिए। कुछ साथियों को इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता था होगा और कुछ साथियों को आज नई जानकारी मिली होगी। तो साथियों, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, समय की रफ्तार के साथ अब हमें भी रुकना होगा। याद रखिएगा, खेत हरा तो घर भरा, पेड़ हरा तो जीवन हरा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की नई बातों के साथ, नई ऊर्जा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन समारोह, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, रथ यात्रा और इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। हाल ही में नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आयुर्वेदिक शैल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना

0: सकते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वैज्ञानिक रूप से सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में 400% की वृद्धि की है। सरकार 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित और रहने योग्य बनाते हुए परोक्ष युद्ध, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन से संबंधित खतरों और जनसंख्यांकीय परिवर्तनों जैसी अन्य सुरक्षा चुनौतियों को रोकना है। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हो बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
2: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे लंबी वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट से ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मंत्रालय ने बताया कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। उड़ीसा के धार्मिक शहर पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ रही है। पवित्र पहंडी बीजी और छेरा पहनरा अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद कल दोपहर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों को खींचने का काम विधिवत रूप से शुरू हुआ। शंखों की गूंज, वैदिक मंत्रों और जय जगन्नाथ के जयकारे के बीच लाखों भक्त बड़ा दंड मार्ग से होते हुए श्री गुंडीजा मंदिर की ओर विशाल लकड़ी के रथों को खींचने में भाग ले रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है और उन्होंने इस भव्य मार्ग को आस्था और भक्ति के सागर में बदल दिया है। विश्व प्रसिद्ध इस महोत्सव का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त ने पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से कोलकाता के साइंस सिटी प्रदर्शनी मैदान दक्षिण 24 परगना जिले में 4 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाले इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर में भागीदारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मेले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा, वस्त्र एवं परिधान, गृह सज्जा, चमड़ा उत्पाद, क्रॉकरी, पैकेट्स एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, हर्बल एवं

आयुर्वेदिक उत्पाद, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, लाइफस्टाइल उत्पाद तथा फर्नीचर एवं इंटीरियर उत्पादों का निर्माण करने वाली पात्र एमएससी इकाइयां भाग ले सकती हैं। प्रतिभागी इकाइयों को खरीद एवं विपणन सहायता योजना के तहत निर्मित स्टॉल किराए पर 80% अनुदान तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों की इकाइयों को 100% अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पात्र आकस्मिक व्यय पर अधिकतम 25,000 रुपए का भुगतान, एक प्रतिनिधि के लिए इकोनॉमी श्रेणी का हवाई यात्रा व्यय तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एमएससी इकाइयों को प्रति आयोजन अधिकतम 80,000 रुपए या वास्तविक व्यय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में वृक्षाबाद के सामुदायिक भवन में स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्युओं को शून्य करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एच.एम. सिद्धाराजू ने डायरिया की रोकथाम के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा हाथ धोने की आदत अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 21 के पार्षद अरुबादी ने केंद्र शासित प्रदेश में डायरिया के मामलों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में 11 चरमा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी के पालित और परिवार कल्याण उपनिदेशक डॉक्टर शाहिनी वर्गीस भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा स्कूली विद्यार्थियों ने हाथ धोने की सही विधि, ORS घोल तैयार करने और जिंक के महत्व प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ORS के पैकेट और जिंक की गोलियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कृषि विभाग की ओर से हाल ही में दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान के 2 पायलट जिलों में फर्टिलाइजर सेल फ्रेमवर्क का पायलट रोल आउट शुरू किया गया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वीप समूह में सब्सिडी वाले उर्वरकों के पारदर्शी, कुशल और किसान अनुकूल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। FFS एक मोबाइल एप्लीकेशन को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ता है। इससे किसान रिजर्व स्टॉक से पहले से उर्वरक बुक कर सकते हैं, QR कोड टोकन जनरेट कर सकते हैं और तय सब डिपो से आसानी से उर्वरक खरीद सकते हैं। लॉन्च से पहले विभाग ने पूरे द्वीप समूह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें किसानों, पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह, PACS, FPO, किसान मित्रों, उर्वरक विक्रेताओं और विस्तार कर्मियों ने भाग लिया। विभाग ने किसानों से FFS प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और नई डिजिटल प्रणाली का लाभ उठाने की अपील की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण हाल ही में माई भारत पोर्टल पर शुरू हो चुका है। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। माई भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक और स्लैम कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु के युवा भाग ले सकते हैं, जिन्हें अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करनी होंगी। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ननकौड़ी के कमोटा बाजार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ननकौड़ी के सहायक आयुक्त डॉक्टर क्षितिज ज्ञानराज साह ने किया। यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन और समेकित जनजातीय विकास परियोजना के तहत निकोबार के उपायुक्त अमित काले के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इसके तहत स्थानीय जनजातीय समुदाय से चयनित सफाई कर्मी घर घर जाकर पृथक किए गए कचरे का संग्रहण करेंगे। उद्घाटन के दौरान सफाई कर्मियों को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए तथा उन्हें इही इंचोन स्वच्छ सेना नाम दिया गया। कार्यक्रम में कचरा पृथककरण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। अधिकारियों ने लोगों से जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग रखने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम के बाद कमोटा बाजार में मेघा स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर SR जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शैक्षणिक

सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। प्रावधित मेरिट सूची 24 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। इस पर दावे एवं आपत्तियां 25 से 28 जुलाई तक स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची 4 अगस्त को जारी की जाएगी। संस्थान ने बताया कि प्रावधिक एवं अंतिम मेरिट सूची कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल संस्थान की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने दावे या आपत्तियां निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल तथा संस्थान के नोटिस बोर्ड का अवलोकन करने की सलाह दी गई है। समाज कल्याण निदेशालय ने वर्ष 2026-27 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा ओबीसी छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति यूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी योजनाओं के लिए इच्छुक छात्र 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गैर CTET योग्य शिक्षकों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से www.youtube.com/@SIEofficial-AN के माध्यम से दैनिक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस संबंध में आगामी CTET परीक्षा 2026 के लिए समय सारणी के अनुसार मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मॉक टेस्ट कल से 29 अगस्त तक चलेगा। सभी गैर CTET योग्य शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा राज्य शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेट्टा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

अभी आप समाचार तरंगनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा। अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है? क्या आप बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई,

और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें

उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति मान्यता परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीज़ों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक

उनको कोई नए टॉयज और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। With this, we conclude our program for today. I'll get back to you in our next segment of Learn Hai. Until then, have a great time. Bye from your RJ Chetan. Call or message us on 0951522703 9. That's 0951522703 9. Or write to us at feedbackamc1@gmail.com. That's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla. That's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:55 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम जिसके तहत चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ हेडलाइन, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 9:30 पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स में जानकारी का विषय रहेगा टिकाऊ विकास के लिए सुबोल। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 6:15 पर शीर्षक होगा कहानी। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस कान। 6:40 पर वतन के गीत। 7:15 पर आप सुनेंगे देश भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशरागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा छाया गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा दस्त पर बीमार स्वस्थ बचपन का पैगाम। विशेषज्ञ होगी डॉक्टर प्रतिभा SR। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TR महालिंगम का बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का समय रहेगा कल सुबह 10:00। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन में कल दिन 11:00। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम

का गीत अतीत। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। मलयालम कार्यक्रम रहेगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर बाद 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे सीमा शर्मा और मन्ना डे। दोपहर बाद 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए।

दोपहर बाद। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा शाम 4:30 पर, 4:45 पर। कार्यक्रमों का विवरण, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर। किसानवाणी कार्यक्रम के तहत संध्या 6 बजे कृषक शिव रतन से बातचीत होगी। विषय रहेगा प्रगतिशील कृषक। 6:30 पर कार्यक्रम होगा आमने सामने। 7 बजे विज्ञापन। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। ये था कार्यक्रमों का विवरण।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

आज के शेष कार्यक्रम मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:05 पर।

7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम, जिसके तहत चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और मतदाता जागरूकता पर बल दिया। होपटाउन जेटी पर IOCL के नेतृत्व में आपदा से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त आपदा पूर्वाभ्यास किया। और भारतीय खेल प्राधिकरण और पर्यटन निदेशालय के समन्वय से आइलैंड मानसून साइकिलिंग टूर का आयोजन किया जाएगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 505 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने जीरकपुर कुराली ग्रीनफील्ड राजमार्ग को भी राष्ट्र को समर्पित किया और जीरकपुर बाईपास तथा चंडीगढ़ एयरपोर्ट एरोसिटी ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से BR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है।

निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना और जनता तक सटीक तथा विश्वसनीय चुनावी जानकारी पहुंचाने में मीडिया की भूमिका को मजबूत करना था। सम्मेलन में मिजोरम सहित देश भर के पत्रकारों और चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और सूचना प्रसार से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी। सम्मेलन में आयोग की हालिया पहलों, मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न चुनावी विषयों पर चर्चा की गई। आयोग का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य मीडिया की समझ को और मजबूत बनाना है, ताकि चुनाव संबंधी तथ्यात्मक जानकारी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाई जा सके। डिगलीपुर में आज भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में भाग लिया। आयोजकों के अनुसार बहुधा रथ यात्रा 24 जुलाई को निकाली जाएगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आपात स्थिति में संबंधित नियंत्रण केंद्रों से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, आपदा पूर्वाभ्यास और आइलैंड मॉनसून साइकिलिंग टूर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। होपटाउन जेटी स्थित मैनिफोल्ड के पास आज अग्नि दुर्घटना से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आपदा पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के होपटाउन बॉटलिंग प्लांट द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय, अंडमान निकोबार पुलिस NDRF, CISF, अंडमान निकोबार अग्निशमन एवं आपात सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समन्वय से किया गया। IOCL के कर्मचारियों और टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में पर्यवेक्षकों ने अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों और सुधार के क्षेत्रों की जानकारी दी। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ ने दक्षिण अंडमान ओपन जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तिथियों में संशोधन किया है। अब यह प्रतियोगिता 25 और 26 जुलाई को नेताजी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। संघ के महासचिव द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 23 जुलाई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी मोबाइल नंबर 9933-248-121 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और पर्यटन निदेशालय के सहयोग से 19 जुलाई को आइलैंड मॉनसून साइकिलिंग टूर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ओपन पुरुष और महिला श्रेणियों में साइकिलिंग टूर आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल, JNRM कॉलेज, गवर्नमेंट प्रेस, सिंक्लेयर होटल, मजार पहाड़ विज्ञान केंद्र होते हुए कार्वाइन स्कोप तट पर समाप्त होगी। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार अभ्यर्थियों की श्रेणीवार अंतिम मेरिट सूची कल कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद अपलोड की जाएगी। नियमित कक्षाएं 27 जुलाई से प्रारंभ होंगी। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित तथा JNRM आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम की पृथक अंतिम मेरिट सूची के अनुसार सुबह के सत्र में होने वाली परामर्श प्रक्रिया में उपस्थित होना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट

0: सूची में दिए गए क्रमांक तथा सुबह और दोपहर बाद के सत्र के अनुसार परामर्श प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यदि सुबह के सत्र के बाद सीटें रिक्त रहती है तभी दोपहर बाद के सत्र में परामर्श आयोजित की जाएगी। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का ई प्रॉस्पेक्टस कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक जारी रहेगी। विशाखापत्तनम स्थित दामोदरम संजीवैया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ डी सूर्य प्रकाश राव ने आज अंडमान लॉ कॉलेज में आयोजित काउंसलिंग के बाद 5 वर्षीय एकीकृत बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए चयनित 37 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा से योग्य अधिवक्ताओं का निर्माण होता है और इससे देश की न्यायपालिका सुदृढ़ होती है। डॉ राव ने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की शुरुआत विधि महाविद्यालयों के कक्षाओं से होनी चाहिए। प्रोफेसर राव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का विश्वास व्यक्त करते हुए अंडमान विधि महाविद्यालय को मार्गदर्शक विश्वविद्यालय के रूप में DSNLU की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन, डिजिटल तकनीक और मतदाता जागरूकता पर बल दिया। होप टाउन जेटी पर IOCL के नेतृत्व में आपदा से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त आपदा पूर्वाभ्यास किया। और भारतीय खेल प्राधिकरण और पर्यटन निदेशालय के समन्वय से आइलैंड मॉनसून साइकिलिंग टूर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी बंबू का लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगली सुबह 18 तारीख को 8 बजे लिटिल अंडमान से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर स्वराज द्वीप लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्री विजयपुरम वापसी यात्रा करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान उसी रात 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटांग लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप शहीद द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान अगली सुबह 19 तारीख को रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड कदमतला स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा।

एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा जलयान। उसी दिन दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर सुबह 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान उसी दिन 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान उसी दिन 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। एक सूचना, प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन 3 श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं, राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानीवाचक ऑडियो श्रृंखला, नवचारी ऑडियो प्रारूप, ब्रॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोशलिंग नीति 2004 तथा उसके न्यूनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सूचना समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं किल दिल फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें दी है शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह ने तथा संगीत से सजाया है गुलजार ने।

अबे पतझड़ नीचे तो उतर, रास्ता पकड़, जा जा जा भाई आगरा जा भाई, अपने यार तो ऐसे हैं, ताज खरीदने निकले हैं और जेब में छुट्टे पैसे हैं। अब सांप के बिल जरा दूर से मिल, अबे बिजली के बिल से कांप न हिल।

समीर के संगीत निर्देशन में तैयार अगला गीत सुनिए, कौन है जो सपनों में आता है फिल्म से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। पेश है युवा भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, बीती हुई गलतियों को सुधारने का, टूटे हुए सपने को फिर से सवारने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। मुश्किलें कभी भी किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती, बल्कि यह तय करती है कि उसके भीतर कितना साहस, धैर्य और विश्वास है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हारने के बजाय उनसे सीखना जानता है, वही समय के साथ एक मजबूत व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए शिकायतों में समय गंवाने के बजाय अपने प्रयासों को और बेहतर बनाइए। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन अपने चरित्र, अपने विचार और अपने कर्मों को बेहतर बनाने की निरंतर यात्रा का नाम है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 17 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा तथा युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 17 जुलाई सन 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि शांति, समानता और मानव गरिमा की आधारशिला है। एक न्यायपूर्ण समाज ही विश्व में स्थायी शक्ति, विश्वास और मानव कल्याण का मार्ग प्रसिद्ध कर सकता है। दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं ग्राम गुनोरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र।

0: से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
1: जी तनुश्री, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया हो गई।
1: जी तनुश्री, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
0: तो मैम, हमारे यहाँ तो धूप निकल आई है और बारिश का इंतजार है, पर बारिश नहीं आ रही है।
1: जी तो तनुश्री, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: और मैम, फिल्म का नाम ने बना दी जोड़ी है, फिल्म है
1: जी
0: और तू है तो जन्नत मेरी।
1: जी और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: पहले तो मेरे जिस मैम से मेरी बात हुई ना, पहले तो मैम आपको डेडिकेट रहेगा,
1: जी
0: और मेरे दोस्त है मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, गंगाधर सावनकर जी है अविनाश जी है, और सी विजयपुरम से पूर्णिमा जी है, और हमारे सभी श्रोताओं को लाइव सुन रहे हैं उनको।
1: जी तो चलिए तनुश्री, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, तो बस पानी की राह देख रहे हैं।
0: जी, तो रमेश जी आप करते क्या हैं?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, काम कर रहा था।
0: जी, तो रमेश जी आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।
0: जी
1: दगा दगा बई बई हो, दगा दगा बई बई हो गई तुमसे उल्फत हो गई।
0: जी, और एक गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप,
0: जी
1: वो भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, लोकेंद्र वर्मा है, उज्जैन से आशुतोष जी, संगीता जी, पूर्णिमा जी, पूनम जी कानपुर से, अविनाश जी, राकेश जी शिमला से, शिवा विदिशा से, विमल अमल गोल्डी और रमेश पात्रे, रक्कू बिल्ले और तनुश्री बिटिया और पुरुषोत्तम कुमार जम्मू कश्मीर से। ये
0: जी, तो चलिए रमेश जी सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं, अभी खेत पर हैं दीदी, वहीं से कॉल लगाया, मिल भी गए दीदी।
1: जी, तो भगवान जी आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: हेलो ब्रदर में से कोई सा भी गीत सुना दीजिए, वो है ना सर की जो सर से धीरे धीरे।
1: जी, और एक गीत आप अपनी किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: पहले तो हमारी बहन है विजयपुरम से पूर्णिमा दीदी, और तनुश्री बिटिया हैं, गंगाधर जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, अविनाश जी हैं, आशुतोष जी हैं, कैसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको डेलीकेट रहेगा।
1: जी, तो चलिए भगवान जी सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।
2: ला

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, कैसे हैं आप?

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी इनसे बात हो रही है।
1: आपकी बात हो रही है और मैं बात कर रहा हूँ राकेश शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार
0: जी नमस्कार, मेरी इनसे बात हो रही है।
1: आपकी बात हो रही है और मैं बात कर रहा हूँ राकेश शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है श्री विजयपुरम से जुड़ के।
0: जी राकेश जी, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ का मौसम साफ है और कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और आज जो है बिल्कुल मौसम साफ है।
0: जी राकेश जी, आपके वहाँ की कोई एक खूबसूरत जगह के बारे में मुझे बताइए।
1: जी हमारे खूबसूरत जगह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बागवानी क्षेत्र है शिमला जिला का कोटखाई। यहाँ से क्या होता है, कोटखाई का नाम जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जो है ज्यादातर जो है बाग के जो है पेड़ लगाए जाते हैं।
0: जी
1: और घूमने के पर्यटक स्थल की बात करें तो कुल्लू मनाली एक अपने आप के सबके जमान पे आता है। कुल्लू मनाली और शिमला जो है ये अच्छी क्या बोलते अच्छा घूमना सके। और शिमला में जो है शूटिंग रेंज है रिज मैदान, वहाँ जो है काफी टूरिस्ट जाते हैं अपने फोटो खींचते हैं तो वहाँ जो है फोटोग्राफर भी होते हैं तो वहाँ जो कपड़े भी देते हैं ताकि आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके आप पहन सकते हैं। फिर क्योंकि वहाँ जो है हमेशा फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती थी और हिमाचली जो स्थानीय कलाकारों की जो है शूटिंग भी वहाँ होती है हमारे शिमला जिले शिमला में।
0: जी
1: जी जी जी
0: तो राकेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सौतन की बेटी और गाने के बोल हैं हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
0: जी राकेश जी, और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा
0: जी,
1: तो पूरण वर्मा, अविनाश तेली और भगवान सिंह परमार और स्कूल 9 से पूर्णिमा जी, सत्य विष्णु कुंडू और मोनिका जी हैं धर्मवीर दिल्ली से और महाराष्ट्र तनुश्री जी है और सबके लिए गाना ये डेडिकेट रहेगा।
0: जी तो चलिए राकेश जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: नमस्ते मैम. मैं सुनील झा बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से.
0: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे
0: जी, और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: हैं. मौसम तो यहाँ बहुत मस्त हो रही है, गर्मी हो रही है यहाँ तो.
0: जी
1: बस बारिश का इंतजार है. बारिश पहले हुई थी लेकिन अब तो बिल्कुल गायब हो गई है बारिश तो.
0: अच्छा
1: यहाँ गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है.
0: जी, सुनील जी आप करते क्या हैं?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलरिंग का.
0: जी, तो सुनील जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: उसका सुना दो. फिल्म किनारा फिल्म का
0: जी
1: नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा.
0: जी और गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी हमारे हेलो वर्मा से एक रेडियो श्रोता ग्रुप के दोस्तों के सुनना साथ सुनना चाह रहे. उसमें लोकन वर्मा जी हैं, गौतम भाई बोली जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, गंगाधर सावनकर जी हैं, जय भगवान सिंह परमार जी हैं, कृष्ण सिंह राजपूत जी हैं, प्रेम सिंह सुदिया जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, लाल टेलर जी हैं, और इसमें सोनू जी हैं. हमारे बहुत से उसमें सभी दोस्तों के लिए रहेगा. जी
0: जी, तो चलिए सुनील जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म टैक्सी चोर से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और साथियों की, बप्पी लहरी का संगीत, रचना सपन जगमोहन की।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में सुनवा रहे हैं आपको मुनी मजे फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे शब्दों की धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनें सपना जगमोहन का लिखा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चांदी सोना।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में श्रोताओं लीजिए सुनिए प्यासा फिल्म का गीत। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, जिसे सुरों में ढाला है SD बर्मन ने।

आहिस्ता आहिस्ता इस फिल्म से लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में ये नगमा। खयाम के संगीत निर्देशन में तैयार, गीत के बोल निदा फैजली ने लिखे हैं।

जयदेव के तर्ज पर बने ये है साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरवगान। पहले रोजगार समाचार। उद्योग निदेशक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा MSE ODR योजना के अंतर्गत निंगल कंसलेंट के एक पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर मार्च 2027 तक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवेदन का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना तथा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकायों अथवा मध्यस्थता एवं सुलह से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 80,000 रुपये समकेत मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित कल 19 जून 2026 को शाम 4 बजे तक निदेशालय उद्योग श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय उद्योग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संपर्क करें। रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरवगान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 होने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र

0: सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का

0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय

0: स्वयं सेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की 4th नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग

0: ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Kent under the Amrit Bharat Station scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The India government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में संदेह से आते हैं में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला संदेश हमें भेजा है कामराज नगर श्री विजयपुरम से हरीश जी ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं जहर फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अगला संदेश हमें आया है मन फिल्म के गीत के लिए बकुलतला श्री विजयपुरम से अनुप कुमार रॉय का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मन फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनिए धरती फिल्म का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू अहमद मिश्रा, बेबी चाहत और साध्या ने। तो श्रोताओं, सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अभी आप हमराज फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। धरती फिल्म के इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है नरवेन महाराष्ट्र से PS नहावकर निर्मला विशाल ने। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला संदेश हमें भेजा है झारखंड से। अंकिता, अंशु और अरविंद ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अलका याग्निक के स्वर में रन फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार के स्वर में लीजिए सुनिए अगला गीत आराधना फिल्म से। इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है दिग्दर्शन और कविता ने मेरठ कैट से। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31:28 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

अनाउंसर माइक नंबर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। टाइम इज 5 AM 00 07 9 11। माइक 2 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। टाइम इज 5 AM 00 29 सेकेंड्स 31 32 33 34।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:30 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक समय में एक ही कार्य करो और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। जब हमारा मन एक लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से केंद्रित होता है, तब कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।